0: द पीपल ऑफ इंडिया। कितनी पावरफुल लाइन है ना ये, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना क्रिश्चियन ना ईसाई, बस वी द पीपल ऑफ इंडिया। हेलो गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और आप सभी को सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक। हम सबसे पहले इंडियन है, इसे एक लाइन में ना तो एक अजीब सा गर्व भी होता है और सुकून भी है। गर्व इस बात का कि अनेकता में एकता हमारे देश में पाई जाती है, और सुकून इस बात का कि मेरी पहचान सिर्फ रंग रूप मजहब पहनावे से नहीं, हमारे हिंदुस्तानी होने से भी होती है। यहाँ मंदिर की घंटी भी अपनी है, मस्जिद की आजान भी अपनी है, गुरुद्वारे की शब्द भी अपनी है और चर्च की प्रेयर भी अपनी है, क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं, ड्रीम्स कल्चर लैंग्वेजेस और इमोशंस का एक घर है। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर सिर्फ तिरंगे को देखिए मत, उसके तीन रंगों में अपना हिंदुस्तान देखिएगा और दिल से कहिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर प्राउड टू बी इंडियन। जय हिंद, भारत माता की जय, और आपको फिर से एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के शो में बहुत सारी बातें होगी, मुलाकातें होगी और आज का ये स्वतंत्र दिन हम सेलिब्रेट करेंगे बहुत ही खुशियों के साथ। सो एंजॉय करते कुछ बेहतरीन से गाने नगमे, ओनली ऑन MGM 90.8 FM।
1: All is well with RJ Adnan.

आज ना तो मुझे मेरे स्कूल के दिनों की बहुत याद आई यार। जब हम छोटे थे ना तो सुबह स्कूल हमारा होता था रेगुलरली 7:15-7:30 के करीब, लेकिन जब ना तो इंडिपेंडेंस डे होता था ना तो उस टाइम में सुबह सबसे पहले घर में उठता था 6 बजे, क्योंकि मैं और मैं अब्बू साथ में उठा करते थे। अब्बू 5:30 बजे उठते थे क्योंकि वो टीचर है तो उन्हें सबसे पहले स्कूल जाना पड़ता था उनके फ्लैग होस्टिंग के लिए, तो मुझे भी उठाते थे। और उस दिन ना तो मैं बहुत ही दिल से उठता था ताकि स्कूल जाने की गड़बड़ होती थी, सबसे पहले स्कूल जाने का मन करता था। फ्रेश वगैरह होने के बाद, तैयार होने के बाद, फिर मेरी मम्मी मुझे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करती थी, वही मम्मी वाली हेयर स्टाइल बनाकर, और फिर जेब पर ना अपने जो यूनिफॉर्म की जेब पर वहाँ पर एक तिरंगा लगाती थी और हाथ में एक तिरंगा हमारे दिया करती थी, और मैं और मेरा दोस्त साइकिल लेकर स्कूल की तरफ जाते थे। वहाँ जाते ही ना तो एक परेड होती थी, फिर राष्ट्रगीत होता था, उसके बाद जो मोमेंट आता था ना सबसे बेस्ट, जिसका हम सभी को इंतजार था, वो था कि वो जो नाश्ता देते थे ना स्कूल में, वो वाला मोमेंट। बट यार मेरे स्कूल वालों के पास बहुत ज्यादा पैसा था ऐसा मुझे लगता था, लेकिन उन्होंने कभी ना तो बिस्किट और समोसे के ऊपर कुछ दिया ही नहीं यार। मैं आज तक यही सोचता हूँ यार ऐसा क्यों किया होगा। बट यार उस टाइम वो लगता था कि यार इतना चुंगुसपना क्यों करती है मेरी स्कूल। बट आज ना तो वही बिस्किट और समोसे बहुत याद आते हैं। आज तो मैं जाना चाहता हूँ, जा नहीं पाया। आपके भी कुछ ऐसी यादगार किस्से होंगे ना स्कूल के, हर किसी के होते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें, डीएम करें इंस्टा पर आरजे अदनान को, और सुनते रहे MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है। All is well. Arjay Adnan ka morning show. Freshness light radio ka flow. On MGM 90.8 FM. All is well with RJ Adnan. All is well with RJ Adnan.

विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

सेलिब्रेट करतोय इंडिपेंडन्स डे म्हणजे स्वातंत्र्य दिवस. तुम्हाला सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी ना तर आपल्या शहरात एक वेगळं रूप पाहायला मिळतंय. स्पेशली अगर आप ना तो फिलहाल क्रांति चौक में जाओगे ना, वहां पर बस आपको हर तरफ तिरंगा तिरंगा और तिरंगा नजर आएगा. एकदम सुकून भरा एहसास वहां पर महसूस होगा. हर कोई अपने शहर में से सीधे पहुंच जाता है सेलिब्रेट करने के लिए क्रांति चौक में. और फिर क्रांति चौक में जाने के बाद फोटो सेशन एंड फिर तिरंगे के साथ फोटो और रैली एंड बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, गाने के प्रोग्राम्स होते हैं, एंजॉयमेंट होता है. फुल ऑन हम स्वतंत्र दिन एकदम बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करते हैं. और हर कोई ना तो अपने गाड़ियों पर तिरंगा झंडा लगाता है और बढ़िया किसी रैली में हिस्सा लेता है. तो मेरी जान, मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोगों, एक बात याद रखो, आप आज ना तो जितनी खुशी से अपने गाड़ियों पर अपने हाथों में तिरंगा लेकर घूम रहे हो ना, तो प्लीज शाम को ना तो उतार कर अपने पास अपने घर में एकदम एहतियात के साथ रखिएगा प्लीज. क्योंकि क्या होता है ना, हम अक्सर देखते हैं 15 अगस्त को ना तो तिरंगा हमारे गाड़ियों पर होता है, हमारे टी शर्ट पर शर्ट पर लगाया हुआ होता है, और 16 अगस्त के दिन ना तो वही तिरंगा कई सड़क किनारे हमें गिरा हुआ मिलता है. तो एक बात याद रखो यार, आप ना तो तिरंगा खरीदते हो, शाम को ना तो अपने पास संभाल के रखिएगा, यहाँ वहाँ पर मत फेंकिएगा. क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि 16 अगस्त के दिन ना तो यही तिरंगे रोड पर, सड़कों पर या किसी कचरे के डिब्बे में हमें दिखाई देते हैं. इसकी बियाद भी मत कीजिएगा. इतना ही मैं कहूँगा, खरीदने की ऐपत आप रखते हो ना तो संभालने की भी हिम्मत रखिएगा. अगर आपसे संभालना नहीं होता है ना तो मत लगाइएगा अपने गाड़ियों पर तिरंगा. अगर संभालना होता है तो ही लगाइएगा, क्योंकि उसकी बेअदबी होना बहुत गलत बात है. सो इस बात का ख्याल रखिए और स्वतंत्र दिन खुशियों के साथ सेलिब्रेट कीजिए. स्टे ट्यून ऑन MGM 90.8 FM. All is well with RJ Adnan.

0: 15 अगस्त एक ऐसा दिन जब पूरा हिंदुस्तान एक साथ कहता है, ये देश मेरा है और इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। हम अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग कल्चर है, अलग ट्रेडिशन है, लेकिन जब बात हिंदुस्तान की आती है तो हम सब की पहचान एक है, वी आर इंडियंस। और आज के इस इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर और कुछ लोगों से मिलेंगे, कुछ कहानियां जानेंगे, कुछ जज्बातों को पहचानेंगे जो हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी सिर्फ एक अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। और आज का शो बेहतरीन तो होने वाला है और देशभक्ति वाले गानों का नगमा और देशभक्ति वाले गाने आज अपने पूरे शो में प्ले होने ही वाले हैं। तो सेलिब्रेट कीजिए इंडिया के कलर्स, इंडिया का स्पिरिट और इंडिया के म्यूजिक के साथ। आपको फिर से एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान, एंड स्टे ट्यून।
1: ऑल इज वेल विद आरजे अदनान।

0: टेक्नॉलॉजीच्या यूजी आणि पीजी साठी ऍडमिशन मिळवा. बीटेक आणि एमटेक कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी एमजीएम युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेसच्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
1: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सचे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा.
2: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26 एमजीएम युनिव्हर्सिटी एन 6 सिडको. व्हिजिट mgmu.ac.in. कॉल 9503082913.
3: इस इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर
4: शिखास और एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लिए लेकर आए हैं स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026, साथ ही फूड, म्यूजिक कॉन्सर्ट और बहुत कुछ.
3: 14 से 16 अगस्त सुबह 11 से रात 9 बजे तक सागर रिसोर्ट चिकलठाना छत्रपति संभाजीनगर.
5: MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इज रेडी टू हेल्प यू मेक योर करियर इन होटल मैनेजमेंट, एविएशन, कलिनरी आर्ट्स, बेकरी एंड इवेंट मैनेजमेंट. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-475-44 or visit mgmu.ac.in.

0: तीसरे दिन का सेलिब्रेशन और भी खूबसूरत हो जाता है जब हमारे देश का फ्यूचर, हमारे बच्चे अपनी आवाज में देशभक्ति का जज्बा लेकर सामने आते हैं।
1: Only on MGM 90.8 FM.
0: अब वक्त है मिलने का। महानगर पालिका केंद्रीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय किराड़पुरा नंबर

उर्दू के टैलेंटेड स्टूडेंट्स से। इस स्कूल के बच्चों का एक खूबसूरत म्यूजिकल ग्रुप है, यानी कि म्यूजिकल बैंड है, कॉयर ऑफ किरातपुरा। और ये हमें सुनाने वाले हैं अपनी आवाज में देशभक्ति के कुछ नगमे, कुछ गाने, जिसमें सुनाई देगी देश के लिए मोहब्बत, गर्व और एकता की आवाज। सो अभी अगली आवाज है इन बच्चों की।

0: सो ये थे हमारे नन्हे सुर जिन्होंने अपनी आवाज से सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि देश के प्रति अपना प्यार और सम्मान हम तक पहुंचाया। महानगर पालिका केंद्रीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय किराड़पुरा नंबर 1 उर्दू कॉयर ऑफ किराड़पुरा के सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस स्वतंत्र दिन मुबारक।
1: All is well with RJ Adnan.

0: मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: इस इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर
3: शिखास और MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लिए लेकर आए हैं स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026, साथ ही फूड, म्यूजिक कॉन्सर्ट और बहुत कुछ.
2: 14 से 16 अगस्त सुबह 11 से रात 9 बजे तक, सागर रिसोर्ट चिकलठाना, छत्रपति संभाजी नगर.
4: वंडरिंग व्हाट्स नेक्स्ट?
5: अनलॉक योर फ्यूचर एट महात्मा गांधी मिशन यूनिवर्सिटी,
4: वेयर इनोवेशन मीट्स एक्सीलेंस. एडमिशंस आर ओपन
5: अक्रॉस अंडरग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा एंड PhD प्रोग्राम्स
4: अक्रॉस डाइवर्स फील्ड्स फ्रॉम engineering and AI to law.
5: Apply now at www.mgmu.ac.in
4: or call 9067612000.

0: देशभक्ति की आवाज सिर्फ गीतों में नहीं होती, कभी ये बच्चों के छोटे स्पीच में होती है, उनके जरिए जज्बातों को बयां करती है और कभी ये खूबसूरत गीत के जरिए दिल तक पहुंचती है। इंडिपेंडेंस डे के स्पेशल सेलिब्रेशन में महानगर पालिका CBSE स्कूल गारखेड़ा के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को मिलने की। स्कूल के स्टूडेंट्स ने अपनी स्पीच और सिंगिंग परफॉर्मेंस के जरिए इंडिपेंडेंस डे के जज्बे को हम सब के सामने रखा है। तो शुरू करते हैं हमारे यंग स्पीकर्स की पावरफुल बातें और सिंगर्स की सुरीली आवाज।
1: न पूछो जमाने से मेरी कहानी क्या है, अरे न पूछो जमाने से मेरी कहानी क्या है, मेरी तो बस एक ही पहचान है कि हम सभी हिंदुस्तानी है, कि हम सभी हिंदुस्तानी है। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड ऑल देयर माय फ्रेंड्स, आई एम खान अलीजा फ्रॉम स्टैंडर्ड 7th ऑफ CSMC CBSE स्कूल गारखेड़ा। टुडे वी ऑल आर गेदर हियर टू सेलिब्रेट इंडियाज इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त 1947 आर नेशन ब्रोक फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड ब्रेथ एयर ऑफ फ्रीडम, दिस फ्रीडम डिडंट कम इजीली। ये आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है, इसके पीछे महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और ऐसे लाखों स्वतंत्र सेनानियों का बलिदान है। आवर फ्रीडम फाइटर्स सैक्रिफाइसेस देयर लाइफ सो दैट वी कुड लिव इन दिस प्रोग्रेसिव एंड डेमोक्रेटिक नेशन। एज अ CBSE स्टूडेंट्स वी रिप्रेजेंट द फ्यूचर ऑफ अ ग्रेट नेशन। हमारी जिम्मेदारी बस पढ़ाई तक सीमित नहीं बल्कि देश को आगे लेकर जाने की भी है। वी मस्ट फाइट अगेंस्ट सोशल इवल्स लाइक करप्शन, pollution and illiteracy through our dedication and our correct choices. देशभक्तों से ही देश की जान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। अरे हम उस देश के फूल है यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। So let us take a pledge to work hard, stay in discipline and contribute to make India a global leader. आओ हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहाँ हर नागरिक खुद को सुरक्षित और शिक्षित महसूस करे। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत।
2: हेलो एवरीवन, माय सेल्फ भक्ति लाहौटी, आई एम फ्रॉम ग्रेड 6th फ्रॉम CSMC CBSE पैटर्न स्कूल उस्मानपुरा। टुडे आई फील वेरी प्राउड टू स्टैंड बिफोर यू एंड स्पीक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज इन द हिस्ट्री ऑफ आर इंडिया, इंडिपेंडेंस डे। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th August. ऑन दिस डे इन 1947 आर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ करेज, यूनिटी, सैक्रिफाइस एंड स्ट्रगल बाय काउंटलेस फ्रीडम फाइटर्स। इंडिपेंडेंस इज नॉट ओनली हैविंग फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, इट्स मीन हैविंग फ्रीडम फ्रॉम द टू लर्न, ग्रो, ड्रीम एंड बिल्ड एन बेटर फ्यूचर। बट विथ फ्रीडम कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज अ स्टूडेंट्स वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट आर नेशन बाय स्टडिंग सिंसियरली, रिस्पेक्टिंग everyone, helping others, protecting our nature, keeping our surrounding clean and following the rules. India is a land of many languages, cultures, religions and traditions. Yet we all share one identity. We are Indians. Our diversity is our biggest strength and should always live together with love, peace,

0: community. On this special day, let us pledge to promise that we will the responsible citizens and make our India proud. Let us work hard to make an India that is educated, strong, clean and powerful. Let us remember the sacrifice of the freedom fighter and the value of freedom that we enjoy today. I am proud to be an Indian and I am proud of my India. Jai Hind, Vande Mataram.
1: क्या बात है अलीजा खान एंड भक्ति लाहोटी, बहुत ही बेहतरीन यार। इतनी छोटी सी उम्र में यार मेरी तो हिम्मत भी नहीं हुई थी कभी स्टेज पर जाने की, लेकिन आप सच में बहुत ही बेहतरीन बातें की है और बहुत ही अच्छा आपने बताया है। सो हमारे साथ अपकमिंग सुपरस्टार जिनकी आवाज सच में काबिले तारीफ है, राखी गायतिड़क। आइए उनकी आवाज में एक गाना एंजॉय करते हैं जो कि इन्हीं के स्कूल से है।

0: थैंक यू।
1: वाह क्या बात है, क्या खूबसूरत प्रेजेंटेशन था यार, बहुत ही लाजवाब और आवाज तो आपकी सच में काबिले तारीफ है। तो महानगर पालिका CBSE स्कूल गारखेड़ा के सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी आवाज और आपके अल्फाज ही हमारे कल के हिंदुस्तान की तस्वीर है। सो आपको तहे दिल से फिर से एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड स्टे ट्यून। ऑल इज वेल विद आरजे अदनान।

0: मॉर्निंग आरजे अदनान आपके साथ है और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं स्वतंत्र दिवस.
1: Only on MGM 90.8 FM.
0: हम सब बराबर है, ये लाइन बचपन से सुनते आए हैं, स्कूल की किताबों में, भाषणों में, नेताओं के वादों में. लेकिन जरा सोचिए, क्या ये बराबर ही सच में हमारे रोजमर्रा के जीवन में है? क्यों किसी को उसके रंग, धर्म या जाति के आधार पर आंका जाता है? क्यों लड़कियां और लड़कियों के लिए अलग नियम है? क्यों अमीर और गरीब के लिए अलग मानक है? बराबरी का मतलब है सबको एक जैसा सम्मान मिले, बिना किसी लेबल, बिना किसी भेदभाव के. बराबरी तब होगी जब बेटी को वही आजादी मिले जो बेटे को मिलती है, जब दफ्तर में किसी सैलरी उसके जेंडर से नहीं, उसके काम से तय हो, जब एक मजदूर की आवाज भी उतनी अहमियत रखे जितनी किसी बड़े अफसर की. बराबरी तब होगी जब किसी का खाना, पहनावा या बोलने का अंदाज उसकी इंसानियत से बड़ा मुद्दा ना हो. हम भूल जाते हैं तिरंगे के तीनों रंग एक दूसरे से अलग होते हुए भी साथ मिलकर ही भारत का झंडा बनाते हैं. अगर कोई एक रंग गायब हो जाए तो तिरंगा अधूरा हो जाता है. ठीक वैसे ही अगर बराबरी नहीं होगी तो समाज अधूरा रह जाएगा. हर कोई हम इक्वल है और एक बराबर में ये जीवन जीते हैं. ना ही कोई ऊपर है, ना ही कोई नीचे है, ना ही कोई छोटा है, ना ही कोई बड़ा है. सब एक बराबरी में है, एक बराबर से है. तो इस आज़ादी के दिन आइए एक वादा करें, हम किसी को भी उसके नाम, काम या पहचान से नहीं, उसके इंसान होने से पहचानेंगे. क्योंकि असली आज़ादी इक्वलिटी में है, समझे? तो इस तरीके से आज का ये स्वतंत्र दिन हम सेलिब्रेट करेंगे इक्वलिटी से. स्टे ट्यून ऑन MGM 90.8 FM. All is well with RJ Adnan.

0: नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्र दिन की ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरजे अदनान आपके साथ इन द शो
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।
0: आज हम स्वतंत्र दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग का अर्थ क्या होता है? केसरिया, इसका मतलब होता है साहस, बलिदान और त्याग। ये रंग हमें याद दिलाता है कि देश की रक्षा, समाज की भलाई और सच्चाई के लिए बलिदान देने का जज्बा हमेशा जिंदा रहना चाहिए। बीच में होता है सफेद रंग, शांति, सच्चाई और ईमानदारी का। ये रंग दर्शाता है कि देश में भाईचारा, समानता और सत्य के रास्ते पर चलना ही हमारी असली ताकत है। सफेद रंग के बीच में नीला अशोक चक्र है, जो कि न्याय और प्रगति का प्रतीक है, और 24 आर्य यानी कि स्पोक्स 24 घंटे चलते रहने और आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। नीचे है हरा रंग, यानी समृद्धि, विकास और धरती से जुड़ाव। ये रंग बताता है कि हमें अपने पर्यावरण, खेती बाड़ी और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ना है। तो कुछ इस तरीके से ये तीन रंग से बनता है हमारा सुंदर सा, प्यारा सा तिरंगा। आज भी ना तो ऐसे लहरते हुए तिरंगे को देखकर तो अपने आप आंखों से आंसू आते हैं और लगता है जिंदगी में, दुनिया में इससे खूबसूरत कोई चीज हो ही नहीं सकती। सो आप सभी को स्वतंत्र दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी इस पर बात होगी, अलग अलग टॉपिक पर बात होगी आज के इस शो में। सो बने रहिए मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ इन द शो।
2: ऑल इज वेल विद आरजे अदनान।

0: दोस्तों जब भी हम खड़े होकर गाते हैं जन गण मन अधिनायक जय है तो दिल में एक अजीब सा गर्व और जोश भर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे राष्ट्रगान की ये पंक्तियां किसने लिखी है और इसके पीछे की कहानी क्या है? हमारा राष्ट्रगान महान कवि दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय ये गीत देश की एकता, संस्कृति और विरासत को सलाम करने के लिए लिखा गया था। कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ 5 लाइनों का गीत है लेकिन असल में एक लंबी कविता का पहला पद है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसमें भारत की विविधता, भाषाओं, नदियों, पर्वतों और राज्यों को एक सूत्र में बांधने वाली भावना को शब्द दिए हैं। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र बना तब जन गण मन को आधिकारिक रूप से हमारे राष्ट्रगान का दर्जा मिला और आज चाहे खेल का मैदान हो, स्कूल का प्रांगण हो या कोई भी राष्ट्रीय समारोह हो, ये गीत सुनते ही ना दिल में अपनेपन, गर्व और देशभक्ति की लहर दौड़ती है। इस राष्ट्रगान के हर शब्द में एक वादा छुपा है, हम अलग अलग होकर भी एक है, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारा भारत एक है। तो अगली बार जब भी राष्ट्रगान गाए तो याद रखिए ये सिर्फ शब्द नहीं, हमारे देश की आत्मा की आवाज है। और एक बात याद रखिएगा, आप किसी भी जगह पर हो, कहां पर भी हो और जिस हालात में हो, अगर कहीं राष्ट्रगीत शुरू हो तो अपना काम छोड़कर राष्ट्रगीत के सम्मान में राष्ट्रगीत खत्म होने तक खड़े रहिएगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस फील कीजिएगा उस मोमेंट को, राष्ट्रगीत का सम्मान जरूर कीजिएगा। सुनते रहिएगा आरजे अदनान के साथ।
1: All is well with RJ Adnan.

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: इस इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर
3: शिखास और एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लिए लेकर आए हैं स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026, साथ ही फूड म्यूजिक कॉन्सर्ट और बहुत कुछ।
2: 14 से 16 अगस्त सुबह 11 से रात 9 बजे तक सागर रिसोर्ट चिकलठाना छत्रपति संभाजीनगर। बाय वन गेट वन फ्री होय खरं एक ज्ञान एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
3: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
2: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंदही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
3: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
2: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, शुड गो 9209099991, पीड बायपास रोड, 9503109429, त्रिमूर्ती चौक, 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।

0: 90.8 FM।
1: और इस मौके पर ना तो आज़ादी के बारे में मैंने अपने शहर के बहुत सारे लोगों से बात की थी और उनके ओपिनियंस और क्या कुछ बदला वो अपने देश में चाहते हैं। जो अभी अपने साथ है ट्रांसजेंडर अल्ताफ।
2: अभी हमारा देश आज़ाद है, आज़ादी का 500 मना रहे, लेकिन आज भी हम आज़ाद नहीं हैं। आज भी हम लोग डिटेंशन में हैं, आज भी हम लोग क्वारंटाइन हैं, आज भी हम लोग अंडर बॉक्स हैं। हम बॉक्स के बाहर कब निकलेंगे? हम अपनी लाइफ आज़ादी से कब जिएंगे? अभी जैसे हर महानगर पालिका, हर गवर्नमेंट सेक्टर एक मैसेज दे रहा है, हर घर तिरंगा। हमारे घर तिरंगा कब लहराएंगे? हमने हमारा तिरंगा कहाँ लहराना? आप वो तिरंगा लहराने के लिए तो हमें जगह दीजिए, ये असलियत है। हमें पंख चाहिए फैलाने, हमारे पास पंख भी हैं, हम उड़ने के लिए तैयार भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें आसमान चाहिए। और जहाँ से हम उड़ान भरेंगे, क्या वो जगह हमारे लिए आपके पास है?
1: बात एकदम आपने सही कही। और एक सवाल मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ कि जो अल्ताफ जी ने कहा अभी कि इन्हें खुला आसमान चाहिए, सो सच में आज ट्रांसजेंडर्स को अपने समाज में उतना खुला आसमान मिलता है क्या, या समाज में वो ओहदा मिलता है क्या, या समाज में वो उन्हें जो चाहिए वो मिलता है क्या? हम अक्सर देखते हैं कि ट्रांसजेंडर ना तो सिग्नल पर होते हैं, भीख मांगते हैं। एक सवाल हमारे मन में आता है कि यार ये लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं लेकिन जॉब क्यों नहीं करते? सवाल यही है कि इन लोगों को जॉब कौन देगा? ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जहाँ पर मिल भी जाता है लेकिन आज भी ये बहुत कम तादाद में है। तो सच में देखते वक्त के साथ कितना बदलाव होगा। स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM। ऑल इज वेल विद RJ अदनान।

0: कहानियाँ, केसरिया त्याग और साहस की, सफेद सच्चाई और अमन की, हरा उम्मीद और तरक्की की, और इनके बीच नीला चक्र जो हमें रुकने नहीं देता, जो हमें प्रगति की ओर ले जाता है।
1: इसी तिरंगे को सलाम करते हुए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रॉम MGM 94 फिल्म, साथ है तो बात है।

0: ऑल इज वेल विद आरजे अदनान।
1: आजादी का उत्सव आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आरजे अदनान आपके साथ हैं ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। और आजादी के इस मौके पर ना तो मैंने अपने शहर के बहुत से लोगों से बात की कि उनको अभी अपने देश में क्या कुछ बदलाव की जरूरत लगती है डेवलपमेंट के बारे में, एंड स्टूडेंट्स से बात की है एजुकेशन सेक्टर में और क्या कुछ नई चीजें आ सकती है। तो अभी अपने साथ है विनोद राउत।
2: आज के दौर में हम देख रहे हैं कि भाई टेक्निकली हम बहुत आगे निकल चुके हैं, फिर भी हमारे यहाँ पे जो मैं जैसे कि स्टूडेंट हूँ तो मेरी कंसर्न ये रहते कि मैं इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाऊँ, घर को बैकिंग दूँ, तो ऐसे करने के लिए मुझे एग्जाम निकलनी पड़ेगी। ये जो है ना एग्जाम के चक्कर, एक तो एग्जाम की एड आते बहुत देर से, इसकी वजह से कभी कभी मोरल डाउन होता है। फिर कुछ खबरें आ जाती है कि भाई पेपर लीक हो गया, कभी कहीं पे मैनेज हो गया, ऐसे होने पे क्या होता है कि मोरल डाउन होता है। फिर नीट के बारे में भी वैसे ही हुआ। ये जो है ना इसकी वजह से क्या होता है ना, हमने हमारा बजट सेट किया होता है कि भाई हम 4 महीने पढ़ाई करेंगे, 4 महीने में ये एग्जाम आने वाली है, उसके बाद ये रहेगा तो इतना खर्चा लगेगा, ये रहता है। पर अगर ऐसे ही होता तो हमारा रहने का कॉस्ट बढ़ता है, घर वालों के ऊपर घर वालों का प्रेशर बढ़ता है, मेंटली डिप्रेस हो जाता है आदमी। हमें पेपर लीक से आजादी चाहिए।
1: वैसे विनोद ने ना तो बहुत सही बात कही यार, सच में आज के दौर में तो पेपर लीक ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है, क्योंकि स्टूडेंट ना तो साल भर मेहनत करते लेकिन चंद लोगों की वजह से ना तो उनकी पूरी साल की मेहनत बर्बाद होती है। तो सच में इस पेपर लीक के मैटर से ना तो हम सभी को आजादी चाहिए। थैंक यू विनोद, थैंक यू सो मच।
0: ऑल इज वेल विद आरजे अदनान।
3: शाम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
4: क्या कहती हो शामू की माँ?
3: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
4: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से, इस देश से।

खुशी क्या होती है पता है बचपन की, जब हम सुबह स्कूल के लिए तैयार हो जाते थे, नहा धोकर 7 बजे स्कूल चले जाते थे और स्कूल जाने के बाद पता चलता था कि स्कूल की छुट्टी है आज, किसी वजह से आज स्कूल बंद रहेगा, तो यार वो जो खुशी होती थी ना चेहरे पर, भागते भागते वापस घर आना, मम्मी को बोलना कि मम्मी आज तो छुट्टी है स्कूल की, और उसके बाद मम्मी ने जो बनाया हुआ टिफिन था ना, वही टिफिन ना कार्टून देखते देखते खाना, उसमें जो खुशी थी ना, वो खुशी आज के बच्चे ना तो एकदम मिस करेगी यार, वो खुशी वो आज के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। आज तो यार स्कूल अगर बंद है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है, क्योंकि यार जो 90s के किड्स हैं ना, तो ये खुशी का मजा उन्होंने लिया है, मैंने तो लिया है, और मुझे तो इतनी खुशी होती थी, आय हाय हाय, जैसे मैं घर पर आया ना तो एकदम चिल्लाता था कि मम्मी आज तो छुट्टी है यार। वैसे यार वो खुशी बचपन वाली जिंदगी में वापस कभी नहीं आती है। तो 90s के किड्स याद आ गए ना आपको भी, आपके बचपन की, आपके स्कूल की, और भी ऐसी ना तो 90s की बातें जानने के लिए, अपने 90s के दौर में जाने के लिए मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ संडे स्पेशल शो 90s वाला शो सुनना ना भूले, सुबह ठीक 9 से संडे के दिन। सो वहां पर बस हम 90s की बातें करते हैं, कोशिश करूंगा कि मेरी बातों से ना तो आपको 90s के एक दौर में लेकर जाने की, तो भूलना मत 90s वाला शो सुनने संडे सुबह 9 बजे, और फिलहाल मेरे साथ सुनते रहिए MGM 90.8 FM। All is well, आरजे अदनान के साथ।

0: जब तिरंगा आसमान में लहराता है तो हमारा वजूद लहराता है। ये वही मिट्टी है जिसमें भगत सिंह को जन्म दिया, वही हवा है जिसमें महात्मा गांधी जी का सपना बसा है। हम सिर्फ भारत में नहीं रहते, भारत हमारे अंदर रहता है। आओ इस मिट्टी की खुशबू महसूस करें और गर्व से कहे,
1: सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रॉम MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: लोगों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
3: इस इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर
4: शिखर और MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लिए लेकर आए हैं स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026, साथ ही फूड, म्यूजिक कॉन्सर्ट और बहुत कुछ।
5: 14 से 16 अगस्त सुबह 11 से रात 9 बजे तक सागर रिसोर्ट चिकलठाना छत्रपति संभाजी नगर।
6: बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादा श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
7: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
6: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंद ही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
7: द्वारकादास श्याम कुमार स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
5: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765 82991।

0: हमें हिंदुस्तान ही तुम्हें गौरव दे दुनिया वालों हमें हिंदुस्तान
1: ही माथे पर राष्ट्र के माथे पर सदा के लिए कलम लग जाएगा कलम
2: अगर मैं ऊपर नहीं गई तो अपना मार डालेंगे।

0: हाँ जी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया।
1: All is well. RJ and Nanak morning show. Freshness Live Radio ka flow.
0: On MGM 90.8 FM. RJ अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM। बड़ा वक्त हो चुका है मेरा था कहने का, यानी कि RJ अदनान आपके साथ था, टाप टाटा बाय बाय कर रहा है, मैं तो चला अब अपनी गली। आज का शो आपको कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा, तो आपका फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा DM कीजिए का इंस्टा पर RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9359320080। इस नंबर पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा, फॉलोअर्स भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बाकी तो अपना ख्याल रखिएगा, आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए MGM 90.8 FM। मिलते हैं अगले अपने शो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: का रंग है गहरा, दिल में भरे तो हर दिन सुनहरा, क्योंकि तिरंगे की ताकत सिर्फ 15 अगस्त तक नहीं, ये तो 365 दिन हमारे दिल में धड़कती है। आओ इस रंग को और गहरा करें और दिल से इस तिरंगे को सलाम करें।
1: इसी तिरंगे को सलाम करते हुए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रॉम MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: रंग तीन कहानियाँ, केसरिया त्याग और साहस की, सफेद सच्चाई और अमन की, हरा उम्मीद और तरक्की की, और इनके बीच नीला चक्र जो हमें रुकने नहीं देता, जो हमें प्रगति की ओर ले जाता है।
1: इसी तिरंगे को सलाम करते हुए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रॉम MGM 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: जब तिरंगा आसमान में लहराता है तो हमारा वजूद लहराता है। ये वही मिट्टी है जिसमें भगत सिंह को जन्म दिया, वही हवा है जिसमें महात्मा गांधी जी का सपना बसा है। हम सिर्फ भारत में नहीं रहते, भारत हमारे अंदर रहता है। आओ इस मिट्टी की खुशबू महसूस करें और गर्व से कहे,
1: सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रॉम एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।

0: देशभक्ति का रंग है गहरा, दिल में भरे तो हर दिन सुनहरा, क्योंकि तिरंगे की ताकत सिर्फ 15 अगस्त तक नहीं, ये तो 365 दिन हमारे दिल में धड़कती है। आओ इस रंग को और गहरा करें और दिल से इस तिरंगे को सलाम करें।
1: इसी तिरंगे को सलाम करते हुए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रॉम MGM 94.8 FM, साथ है तो बात है।

फैशन सिर्फ स्टाइल नहीं अपनी रूट्स को सेलिब्रेट करने का एक अंदाज है। स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 लियोनार्डो दा विंची स्कूल ऑफ डिजाइन MGM यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स लेकर आ रहे स्पेशली डिजाइन आउटफिट जो बने हैं ब्यूटीफुल हैंडलूम फैब्रिक से और फैशन के साथ इंटीरियर डिजाइन डिपार्टमेंट की क्रिएटिव इंस्टॉलेशन भी होगी स्पेशल अट्रैक्शन। स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 14-16 अगस्त एंड फैशन शो 15 अगस्त इवनिंग 7 PM एट सागर रिसोर्ट चिकलधारा छत्रपति संभाजीनगर।

0: रंग तीन कहानियाँ, केसरिया त्याग और साहस की, सफेद सच्चाई और अमन की, हरा उम्मीद और तरक्की की, और इनके बीच नीला चक्र जो हमें रुकने नहीं देता, जो हमें प्रगति की ओर ले जाता है।
1: इसी तिरंगे को सलाम करते हुए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रॉम MGM 94.8 FM, साथ है तो बात।

0: जब तिरंगा आसमान में लहराता है तो हमारा वजूद लहराता है। ये वही मिट्टी है जिसमें भगत सिंह को जन्म दिया, वही हवा है जिसमें महात्मा गांधी जी का सपना बसा है। हम सिर्फ भारत में नहीं रहते, भारत हमारे अंदर रहता है। आओ इस मिट्टी की खुशबू महसूस करें और गर्व से कहे,
1: सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रॉम MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

फैशन सिर्फ स्टाइल नहीं अपनी रूट्स को सेलिब्रेट करने का एक अंदाज है। स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 लियोनार्डो दा विंची स्कूल ऑफ डिजाइन MGM यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स लेकर आ रहे हैं स्पेशली डिजाइन आउटफिट जो बने हैं ब्यूटीफुल हैंडलूम फैब्रिक से और फैशन के साथ इंटीरियर डिजाइन डिपार्टमेंट की क्रिएटिव इंस्टॉलेशन भी होगी स्पेशल अट्रैक्शन। स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 14-16 अगस्त एंड फैशन शो 15 अगस्त इवनिंग 7 PM एट सागर रिसोर्ट चिकलधारा छत्रपति संभाजीनगर।

0: जब तिरंगा आसमान में लहराता है तो हमारा वजूद लहराता है। ये वही मिट्टी है जिसमें भगत सिंह को जन्म दिया, वही हवा है जिसमें महात्मा गांधी जी का सपना बसा है। हम सिर्फ भारत में नहीं रहते, भारत हमारे अंदर रहता है। आओ इस मिट्टी की खुशबू महसूस करें और गर्व से कहे,
1: सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रॉम MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: तीन रंग तीन कहानियाँ, केसरिया त्याग और साहस की, सफेद सच्चाई और अमन की, हरा उम्मीद और तरक्की की, और इनके बीच नीला चक्र जो हमें रुकने नहीं देता, जो हमें प्रगति की ओर ले जाता है।
1: इसी तिरंगे को सलाम करते हुए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रॉम MGM 94.8 FM, साथ है तो बात है।

फैशन सिर्फ स्टाइल नहीं अपनी रूट्स को सेलिब्रेट करने का एक अंदाज है। स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 लियोनार्डो दा विंची स्कूल ऑफ डिजाइन MGM यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स लेकर आ रहे स्पेशली डिजाइन आउटफिट जो बने हैं ब्यूटीफुल हैंडलूम फैब्रिक से और फैशन के साथ इंटीरियर डिजाइन डिपार्टमेंट की क्रिएटिव इंस्टॉलेशन भी होगी स्पेशल अट्रैक्शन। स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 14-16 अगस्त एंड फैशन शो 15 अगस्त इवनिंग 7 PM एट सागर रिसोर्ट चिकलधारा छत्रपति संभाजीनगर।

0: भक्ति का रंग है गहरा, दिल में भरे तो हर दिन सुनहरा, क्योंकि तिरंगे की ताकत सिर्फ 15 अगस्त तक नहीं, ये तो 365 दिन हमारे दिल में धड़कती है। आओ इस रंग को और गहरा करें और दिल से इस तिरंगे को सलाम करें।
1: इसी तिरंगे को सलाम करते हुए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रॉम MGM 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: तीन रंग तीन कहानियाँ, केसरिया त्याग और साहस की, सफेद सच्चाई और अमन की, हरा उम्मीद और तरक्की की, और इनके बीच नीला चक्र जो हमें रुकने नहीं देता, जो हमें प्रगति की ओर ले जाता है।
1: इसी तिरंगे को सलाम करते हुए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रॉम MGM 94.85 साथ है तो बात है।

फैशन सिर्फ स्टाइल नहीं अपनी रूट्स को सेलिब्रेट करने का एक अंदाज है। स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 लियोनार्डो दा विंची स्कूल ऑफ डिजाइन MGM यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स लेकर आ रहे स्पेशली डिजाइन आउटफिट जो बने हैं ब्यूटीफुल हैंडलूम फैब्रिक से और फैशन के साथ इंटीरियर डिजाइन डिपार्टमेंट की क्रिएटिव इंस्टॉलेशन भी होगी स्पेशल अट्रैक्शन। स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 14-16 अगस्त एंड फैशन शो 15 अगस्त इवनिंग 7 PM एट सागर रिसोर्ट चिकलधारा छत्रपति संभाजीनगर।

0: जब तिरंगा आसमान में लहराता है तो हमारा वजूद लहराता है। ये वही मिट्टी है जिसमें भगत सिंह को जन्म दिया, वही हवा है जिसमें महात्मा गांधी जी का सपना बसा है। हम सिर्फ भारत में नहीं रहते, भारत हमारे अंदर रहता है। आओ इस मिट्टी की खुशबू महसूस करें और गर्व से कहे,
1: सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रॉम MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: विविधता का रंग है गहरा, दिल में भरे तो हर दिन सुनहरा, क्योंकि तिरंगे की ताकत सिर्फ 15 अगस्त तक नहीं, ये तो 365 दिन हमारे दिल में धड़कती है। आओ इस रंग को और गहरा करें और दिल से इस तिरंगे को सलाम करें।
1: इसी तिरंगे को सलाम करते हुए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रॉम MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: सैकड़ों मेहमान और 500 से ज्यादा स्टाफ होटल में फंसे हुए हैं।
1: आसमां में कितने परिंदे या मुसाफिर या है शहर के, ढूंढते हैं सब अपना मकान।
2: Get through this, we must stick together.

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Buy one, get one free. Hoi hoi, khara, ek gyan ek free milwa. Swatantra dinacha khas nimittane Dwargada Shyam Kumar ghiun aale aaye shandar offers.
2: Banarasi satin sari, printed dola sari, designer sari, zamdani silk, kimaya cotton, kiwa ladies dress. Tumchi favorite sari, buy one, get one free.
1: Manje style double ani shopping sa anand hi double. Swatantra din sajra kara navya shopping sobat.
2: Dwargada Shyam Kumar swatantryacha abhiman, natyancha sanman, shandar offer sobat.
3: Hi offer फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार सिडको 9209099991 बीड बायपास रोड 9503109429 त्रिमूर्ति चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991
4: फैशन सिर्फ स्टाइल नहीं अपनी रूट्स को सेलिब्रेट करने का एक अंदाज है स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 लियोनार्डो दा विंची स्कूल ऑफ डिजाइन एमजीएम यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स लेकर आ रहे स्पेशली डिजाइन आउटफिट जो बने हैं ब्यूटीफुल हैंडलूम फैब्रिक से और फैशन के साथ इंटीरियर डिजाइन डिपार्टमेंट की क्रिएटिव इंस्टॉलेशन भी होगी स्पेशल अट्रैक्शन स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 14 टू 16 अगस्त एंड फैशन शो 15 अगस्त इवनिंग 7 पीएम एट सागर रिसोर्ट चिकलठाणा छत्रपति संभाजीनगर।

0: पंचायतों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़ें इस अभियान से।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
3: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
4: Buy one, get one free. Hoi hoi, khara, ek gyan, ek free milwa. Swatantra dinacha khas nimittane Dwargada Shyam Kumar ghiun aale aaye shandar offers.
5: Banarasi satin sari, printed dola sari, designer sari, zamdani silk, kimaya cotton, kiva ladies dress. Tumchi favorite sari, buy one get one free.
4: Manje style double ani shopping cha anand hi double. Swatantra din sadra kara navya shopping sobat.
5: Dwargada Shyam Kumar swatantryacha abhiman, natyancha sanman, shandar offer sobat.
4: Hi offer फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारगदा श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ति चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।
6: इस इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर
7: शिखास और एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लिए लेकर आए हैं स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026, साथ ही फूड, म्यूजिक कॉन्सर्ट और बहुत कुछ।
6: 14 से 16 अगस्त सुबह 11 से रात 9 बजे तक, सागर रिसोर्ट चिकलठाणा, छत्रपति संभाजी नगर।

0: मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: इस इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर
3: शिखास और MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लिए लेकर आए हैं स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026, साथ ही फूड, म्यूजिक कॉन्सर्ट और बहुत कुछ.
2: 14 से 16 अगस्त सुबह 11 से रात 9 बजे तक, सागर रिसोर्ट चिकलठाना, छत्रपति संभाजी नगर.
4: वंडरिंग व्हाट्स नेक्स्ट?
5: अनलॉक योर फ्यूचर एट महात्मा गांधी मिशन यूनिवर्सिटी,
4: वेयर इनोवेशन मीट्स एक्सीलेंस. एडमिशंस आर ओपन
5: अक्रॉस अंडरग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा एंड PhD programs
4: across diverse fields from engineering and AI to law.
5: Apply now at www.mgmu.ac.in
4: or call 9067612000.
6: बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा. स्वातंत्र्य दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्यामकुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर.
7: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री.
6: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंदही डबल. स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत.
7: द्वारकादास श्यामकुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत.
8: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत.
6: पत्ता द्वारकादास श्यामकुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991.
9: फैशन सिर्फ स्टाइल नहीं, अपनी रूट्स को सेलिब्रेट करने का एक अंदाज है. स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026, लियोनार्डो दा विंची स्कूल ऑफ डिजाइन MGM यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स लेकर आ रहे स्पेशली डिजाइन आउटफिट, जो बने हैं ब्यूटीफुल हैंडलूम फैब्रिक से. और फैशन के साथ इंटीरियर डिजाइन डिपार्टमेंट की क्रिएटिव इंस्टॉलेशन भी होगी स्पेशल अट्रैक्शन. स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026, 14 to 16 August, एंड फैशन शो 15 August इवनिंग 7 PM एट सागर रिसोर्ट चिकलठाना, छत्रपति संभाजी नगर.
10: शाम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया.
11: क्या कहती हो शामू की माँ?
10: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे.
11: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से, इस देश से.

0: गांव से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
3: इस इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर
4: शिखास और एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लिए लेकर आए हैं स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026, साथ ही फूड, म्यूजिक कॉन्सर्ट और बहुत कुछ।
3: 14 से 16 अगस्त सुबह 11 से रात 9 बजे तक सागर रिसोर्ट चिकलठाना छत्रपति संभाजी नगर। बाय वन गेट वन फ्री, होय खर एक ज्ञान एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर्स।
4: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
3: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंग चा आनंद ही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
4: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
3: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765 82991।

0: मॉर्निंग आरजे अदनान आपके साथ है और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं स्वतंत्र दिवस.
1: Only on MGM 90.8 FM.
0: हम सब बराबर है, ये लाइन बचपन से सुनते आए हैं, स्कूल की किताबों में, भाषणों में, नेताओं के वादों में. लेकिन जरा सोचिए, क्या ये बराबर ही सच में हमारे रोजमर्रा के जीवन में है? क्यों किसी को उसके रंग, धर्म या जाति के आधार पर आंका जाता है? क्यों लड़के और लड़कियों के लिए अलग नियम है? क्यों अमीर और गरीब के लिए अलग मानक है? बराबरी का मतलब है सबको एक जैसा सम्मान मिले, बिना किसी लेबल, बिना किसी भेदभाव के. बराबरी तब होगी जब बेटी को वही आजादी मिले जो बेटे को मिलती है, जब दफ्तर में किसी सैलरी उसके जेंडर से नहीं उसके काम से तय हो, जब एक मजदूर की आवाज भी उतनी ही अहमियत रखे जितनी किसी बड़े अफसर की. बराबरी तब होगी जब किसी का खाना, पहनावा या बोलने का अंदाज उसकी इंसानियत से बड़ा मुद्दा ना हो. हम भूल जाते हैं तिरंगे के तीनों रंग एक

दूसरे से अलग होते हुए भी साथ मिलकर ही भारत का झंडा बनाते हैं। अगर कोई एक रंग गायब हो जाए तो तिरंगा अधूरा हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर बराबरी नहीं होगी तो समाज अधूरा रह जाएगा। हर कोई हम इक्वल है और एक बराबर में ये जीवन जीते हैं। ना ही कोई ऊपर है, ना ही कोई नीचे है, ना ही कोई छोटा है, ना ही कोई बड़ा है, सब एक बराबरी में है, एक बराबर से है। तो इस आज़ादी के दिन आइए एक वादा करें, हम किसी को भी उसके नाम, काम या पहचान से नहीं, उसके इंसान होने से पहचानेंगे, क्योंकि असली आज़ादी इक्वलिटी में है, समझे। तो इस तरीके से आज का ये स्वतंत्र दिन हम सेलिब्रेट करेंगे इक्वलिटी से। स्टे ट्यून ऑन MGM 90.8 FM। All is well with RJ Adnan.

0: नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्र दिन की ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरजे अदनान आपके साथ इन द शो
1: विद आरजे अदनान, ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
0: आज हम स्वतंत्र दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग का अर्थ क्या होता है? केसरिया, इसका मतलब होता है साहस, बलिदान और त्याग। ये रंग हमें याद दिलाता है कि देश की रक्षा, समाज की भलाई और सच्चाई के लिए बलिदान देने का जज्बा हमेशा जिंदा रहना चाहिए। बीच में होता है सफेद रंग, शांति, सच्चाई और ईमानदारी का। ये रंग दर्शाता है कि देश में भाईचारा, समानता और सत्य के रास्ते पर चलना ही हमारी असली ताकत है। सफेद रंग के बीच में नीला अशोक चक्र है, जो कि न्याय और प्रगति का प्रतीक है, और 24 आर्य यानी कि स्पोक्स 24 घंटे चलते रहने और आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। नीचे है हरा रंग, यानी समृद्धि, विकास और धरती से जुड़ाव। ये रंग बताता है कि हमें अपने पर्यावरण, खेती बाड़ी और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ना है। तो कुछ इस तरीके से ये तीन रंग से बनता है हमारा सुंदर सा, प्यारा सा तिरंगा। आज भी ना तो ऐसे लहरते हुए तिरंगे को देखकर तो अपने आप आंखों से आंसू आते हैं और लगता है जिंदगी में, दुनिया में इससे खूबसूरत कोई चीज हो ही नहीं सकती। सो आप सभी को स्वतंत्र दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी इस पर बात होगी, अलग अलग टॉपिक पर बात होगी आज के इस शो में। सो बने रहिए मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ इन द शो।
2: ऑल इज वेल विद आरजे अदनान।

0: दोस्तों जब भी हम खड़े होकर गाते हैं जन गण मन अधिनायक जय है तो दिल में एक अजीब सा गर्व और जोश भर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे राष्ट्रगान की ये पंक्तियां किसने लिखी है और इसके पीछे की कहानी क्या है? हमारा राष्ट्रगान महान कवि दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय यह गीत देश की एकता, संस्कृति और विरासत को सलाम करने के लिए लिखा गया था। कई लोगों को लगता है कि यह सिर्फ 5 लाइनों का गीत है लेकिन असल में एक लंबी कविता का पहला पद है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसमें भारत की विविधता, भाषाओं, नदियों, पर्वतों और राज्यों को एक सूत्र में बांधने वाली भावनाओं को शब्द दिए हैं। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र बना तब जन गण मन को आधिकारिक रूप से हमारे राष्ट्रगान का दर्जा मिला और आज चाहे खेल का मैदान हो, स्कूल का प्रांगण हो या कोई भी राष्ट्रीय समारोह हो, ये गीत सुनते ही ना दिल में अपनेपन, गर्व और देशभक्ति की लहर दौड़ती है। इस राष्ट्रगान के हर शब्द में एक वादा छुपा है। हम अलग अलग होकर भी एक है, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारा भारत एक है। तो अगली बार जब भी राष्ट्रगान गाए तो याद रखिए ये सिर्फ शब्द नहीं, ये हमारे देश की आत्मा की आवाज है। और एक बात याद रखिएगा, आप किसी भी जगह पर हो, कहां पर भी हो और जिस हालात में हो, अगर कहीं राष्ट्रगीत शुरू हो तो अपना काम छोड़कर राष्ट्रगीत के सम्मान में राष्ट्रगीत खत्म होने तक खड़े रहिएगा। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस फील कीजिएगा उस मोमेंट को और राष्ट्रगीत का सम्मान जरूर कीजिएगा। सुनते रहिएगा आरजे अदनान के साथ।
1: All is well with RJ Adnan.

0: से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
3: फैशन सिर्फ स्टाइल नहीं, अपनी रूट्स को सेलिब्रेट करने का एक अंदाज है। स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 लियोनार्डो दा विंची स्कूल ऑफ डिजाइन MGM यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स लेकर आ रहे स्पेशली डिजाइन आउटफिट जो बने हैं ब्यूटीफुल हैंडलूम फैब्रिक से, और फैशन के साथ इंटीरियर डिजाइन डिपार्टमेंट की क्रिएटिव इंस्टॉलेशन भी होगी स्पेशल अट्रैक्शन। स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 14-16 अगस्त एंड फैशन शो 15 अगस्त इवनिंग 7 PM एट सागर रिसोर्ट चिकलधारा छत्रपति संभाजीनगर।
4: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर एन आर्किटेक्ट और टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, सो MGM यूनिवर्सिटीज JNEC इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कोर्सेज एक्रेडिटेड बाय AICTE एंड COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
5: So let me present to you the Pandavas.

0: We need to show the world our power. अब हम डर के शांत नहीं बैठेंगे, करके शांत बैठेंगे.
1: Only on MGM 90.8 FM.
2: और इस मौके पर ना तो आज़ादी के बारे में मैंने अपने शहर के बहुत सारे लोगों से बात की थी और उनके ओपिनियंस और क्या कुछ बदला वो अपने देश में चाहते हैं. जो अभी अपने साथ है ट्रांसजेंडर अल्ताफ.
3: अभी हमारा देश आज़ाद है, आज़ादी का 500 मना रहे, लेकिन आज भी हम आज़ाद नहीं हैं. आज भी हम लोग डिटेंशन में हैं, आज भी हम लोग क्वारंटाइन हैं, आज भी हम लोग अंडर बॉक्स हैं. हम बॉक्स के बाहर कब निकलेंगे? हम अपनी लाइफ आज़ादी से कब जिएंगे? अभी जैसे हर महानगर पालिका, हर गवर्नमेंट सेक्टर एक मैसेज दे रहा है, हर घर तिरंगा. हमारे घर तिरंगा कब लहराएंगे? हमने हमारा तिरंगा कहाँ लहराना? आप वो तिरंगा लहराने के लिए तो हमें जगह दीजिए. ये असलियत है. हमें पंख चाहिए फैलाने. हमारे पास पंख भी हैं, हम उड़ने के लिए तैयार भी है, सब कुछ है, लेकिन हमें आसमान चाहिए. और जहाँ से हम उड़ान भरेंगे, क्या वो जगह हमारे लिए आपके पास है?
2: बात एकदम आपने सही कही. और एक सवाल मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ कि जो अल्ताफ जी ने कहा अभी कि इन्हें खुला आसमान चाहिए, सो सच में आज ट्रांसजेंडर्स को अपने समाज में उतना खुला आसमान मिलता है क्या? या समाज में वो ओहदा मिलता है क्या? या समाज में वो उन्हें जो चाहिए वो मिलता है क्या? हम अक्सर देखते हैं कि ट्रांसजेंडर ना तो सिग्नल पर होते हैं, भीख मांगते हैं. एक सवाल हमारे मन में आता है कि यार ये लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं लेकिन जॉब क्यों नहीं करते? सवाल यही है कि इन लोगों को जॉब कौन देगा? ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है जहाँ पर मिल भी जाता है लेकिन आज भी ये बहुत कम तादाद में है. तो सच में देखते हैं वक्त के साथ कितना बदलाव होगा. स्टे ट्यून ऑन MGM 90.8 FM. All is well with RJ Adnan.

0: ऑल इज वेल विद आरजे अदनान।
1: आजादी का उत्सव आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आरजे अदनान आपके साथ हैं ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। और आजादी के इस मौके पर ना तो मैंने अपने शहर के बहुत से लोगों से बात की कि उनको अभी अपने देश में क्या कुछ बदलाव की जरूरत लगती है डेवलपमेंट के बारे में, एंड स्टूडेंट्स से बात की है एजुकेशन सेक्टर में और क्या कुछ नई चीजें आ सकती है। तो अभी अपने साथ

0: थे विनोद राउत।
1: आज के दौर में हम देख रहे हैं कि भाई टेक्निकली हम बहुत आगे निकल चुके हैं, फिर भी हमारे यहाँ पे जो मैं जैसे कि स्टूडेंट हूँ तो मेरी कंसर्न ये रहते कि मैं इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाऊँ, घर को बैकिंग दूँ, तो ऐसे करने के लिए मुझे एग्जाम निकलनी पड़ेगी। ये जो है ना एग्जाम के चक्कर, एक तो एग्जाम के एड आते हैं बहुत देर से, इसकी वजह से कभी कभी मोरल डाउन होता है। फिर कुछ खबरें आ जाती है कि भाई पेपर लीक हो गया, कभी कहीं पे मैनेज हो गया, ऐसे होने पे क्या होता है कि मोरल डाउन होता है। फिर नीट के बारे में भी वैसे ही हुआ। ये जो है ना इसकी वजह से क्या होता है ना, हमने हमारा बजट सेट किया होता है कि भाई हम 4 महीने पढ़ाई करेंगे, 4 महीने में ये एग्जाम आने वाली है, उसके बाद ये रहेगा तो इतना खर्चा लगेगा, ये रहता है। पर अगर ऐसे ही होता तो हमारा रहने का कॉस्ट बढ़ता है, घर वालों के ऊपर घर वालों का प्रेशर बढ़ता है, मेंटली डिप्रेस हो जाता है आदमी। हमें पेपर लीक से आजादी चाहिए।
0: वैसे विनोद ने ना तो बहुत सही बात कही यार, सच में आज के दौर में तो पेपर लीक ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है, क्योंकि स्टूडेंट ना तो साल भर मेहनत करते लेकिन चंद लोगों की वजह से ना तो उनकी पूरी साल की मेहनत बर्बाद होती है। तो सच में इस पेपर लीक के मैटर से ना तो हम सभी को आजादी चाहिए। थैंक यू विनोद, थैंक यू सो मच।
2: ऑल इज वेल विद आरजे अदनान।

0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: मोहन और सीमा बचपन के दोस्त थे, दोनों हमेशा एक साथ खेलते थे, हर छोटी छोटी बात पर हंसी ठिठोली करते थे। एक दिन मोहन ने सीमा से कहा, क्या तुम कभी मुझे बिना जाने बिना पूछे अपना हाथ थाम पाओगी? सीमा मुस्कुराई और बोली, अगर तुम मुझसे हमेशा सच बोलोगे तो मुझे कोई शक नहीं होगा। वो दिन आया जब मोहन को पता चला कि उसे सीमा से प्यार हो गया है, लेकिन वो डरता था अपनी दोस्ती खोने से, जैसे आप लोग भी डरते हो ना आपकी दोस्ती खोने से। फिर एक शाम आई जब मोहन ने सीमा को गुलाब का फूल दे दिया और कहा, तुमसे ज़्यादा खास कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में। सीमा ने गुलाब का फूल लिया और बस इतना कहा, मुझे तुमसे कभी दूर नहीं होना। दोस्ती से शुरू हुआ प्यार अब दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया।
0: अदनान सी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो

फैशन सिर्फ स्टाइल नहीं अपनी रूट्स को सेलिब्रेट करने का एक अंदाज है। स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 लियोनार्डो दा विंची स्कूल ऑफ डिजाइन MGM यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स लेकर आ रहे स्पेशली डिजाइन आउटफिट जो बने हैं ब्यूटीफुल हैंडलूम फैब्रिक से और फैशन के साथ इंटीरियर डिजाइन डिपार्टमेंट की क्रिएटिव इंस्टॉलेशन भी होगी स्पेशल अट्रैक्शन। स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 14-16 अगस्त एंड फैशन शो 15 अगस्त इवनिंग 7 PM एट सागर रिसोर्ट चिकलठाना छत्रपति संभाजीनगर।

0: नृत्य का रंग है गहरा, दिल में भरे तो हर दिन सुनहरा, क्योंकि तिरंगे की ताकत सिर्फ 15 अगस्त तक नहीं, ये तो 365 दिन हमारे दिल में धड़कती है। आओ इस रंग को और गहरा करें और दिल से इस तिरंगे को सलाम करें।
1: इसी तिरंगे को सलाम करते हुए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रॉम MGM 94.8 FM, साथ है तो बात है।

फैशन सिर्फ स्टाइल नहीं अपनी रूट्स को सेलिब्रेट करने का एक अंदाज है। स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 लियोनार्डो दा विंची स्कूल ऑफ डिजाइन MGM यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स लेकर आ रहे स्पेशली डिजाइन आउटफिट जो बने हैं ब्यूटीफुल हैंडलूम फैब्रिक से और फैशन के साथ इंटीरियर डिजाइन डिपार्टमेंट की क्रिएटिव इंस्टॉलेशन भी होगी स्पेशल अट्रैक्शन। स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 14-16 अगस्त एंड फैशन शो 15 अगस्त इवनिंग 7 PM एट सागर रिसोर्ट चिकलधारा छत्रपति संभाजीनगर।

0: प्लेसमेंट ची हमें सुद्धा
1: एडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26 MGM यूनिवर्सिटी एंड सिक्स सिडको विजिट MGMU.ac.in कॉल 9503082

0: जब तिरंगा आसमान में लहराता है तो हमारा वजूद लहराता है। ये वही मिट्टी है जिसमें भगत सिंह को जन्म दिया, वही हवा है जिसमें महात्मा गांधी जी का सपना बसा है। हम सिर्फ भारत में नहीं रहते, भारत हमारे अंदर रहता है। आओ इस मिट्टी की खुशबू महसूस करें और गर्व से कहे,
1: सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रॉम MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: कहानियाँ, केसरिया त्याग और साहस की, सफेद सच्चाई और अमन की, हरा उम्मीद और तरक्की की, और इनके बीच नीला चक्र जो हमें रुकने नहीं देता, जो हमें प्रगति की ओर ले जाता है।
1: इसी तिरंगे को सलाम करते हुए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रॉम MGM 94.8 FM, साथ है तो बात है।

फैशन सिर्फ स्टाइल नहीं अपनी रूट्स को सेलिब्रेट करने का एक अंदाज है। स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 लियोनार्डो दा विंची स्कूल ऑफ डिजाइन MGM यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स लेकर आ रहे स्पेशली डिजाइन आउटफिट जो बने हैं ब्यूटीफुल हैंडलूम फैब्रिक से और फैशन के साथ इंटीरियर डिजाइन डिपार्टमेंट की क्रिएटिव इंस्टॉलेशन भी होगी स्पेशल अट्रैक्शन। स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 14-16 अगस्त एंड फैशन शो 15 अगस्त इवनिंग 7 PM एट सागर रिसोर्ट चिकलधारा छत्रपति संभाजीनगर।

0: radio. MGM 90.8 FM. साथ है तो बात है.
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं,

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार।

को ये बता दो, कह दो हर नजर से, सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से।

चाहे भूलो के साथ खेलो चाहे कली से प्यार करो।